तेरा अंत न पारावरिया, राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावै है सब त्यावै तुझी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारी जी, तू जिया का दा तारा, हर त्या

गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराश का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रिष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मुहले हो उबारे कव्यो बाच बेंती चौपई हमरी

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै।

ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ता कौ कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है देती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल विक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जू जाहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक न जान्यों।

परमं पहुले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत।

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तिन्ना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियाड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना।

जग और ना जाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन प्रव मथुरा जिन अम

अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर से टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।

गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी, औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्ब रोग खंडन गुणकारी, काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिनस जाए हर नाम उचारी, स्नान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी, साजन मीत सखा अर्ब

पुरख निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखा।

0: नमस्तंग पे के नमस्तंग लेके
1: नमस्तंग गाए नमस्तंग जाए
0: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
1: नमस्तंग नामे नमस्तंग डामे
0: नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग तर्मंग
1: नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग
0: नमस्तंग जीते नमस्तंग

0: मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईश्वर नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अनुपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अतो उदय अर्थं अनुम हर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अचेति अपेति अनामं अकामं
1: समस्त पराधी समस्त तत्त्वं
0: तेरा जोर जात्री छन जले है थले है अपीत है अपे है
1: प्रभु है
0: भुजंग पर आत छंद गादे बादे आनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमान्य समस्त निधाने
0: नमस्त्वं निर्नाते नमस्त्वं परमाते
1: नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे
0: नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो शाहे नमो महामहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
0: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अतिजे बीजे समस्तं प्रसिजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सिद्धं निवासी
0: कर्पच्छं त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे
1: अचल राज्य।

0: एक मुहूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेल खेल आनंद को अभिलेक
0: देव देव ना जाने जब वेद और कतेब
1: रूप रंग ना जात पाछो जाने के जेब
0: आत्मात्मा जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चक्र बकर फिरे चतर जग माहिए पुरतीन
0: लोक चौथे के बिके जग जाप ही जे जाप
1: आ देव नाद मुहूर्त आप्यो सब जे थाप
0: परम रूप पुनीत मुहूर्त पूर्ण पुरख अपार
1: सर्व विचुर थियो संयुर कर्ण पंजर हार
0: कालहीन कला सुनचुक तो काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पाना नाम आप रूप मीक नुस्त एक पुरख अवदूत अंग ही न पंग नातम एक पुरख पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख परम वेद पुराण जाके

0: भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चाचरी छंद ना सतराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
1: तो प्रसाद कथते के आची जिदेसे की आप इज पेसे
2: के आकन करने के आप पंज पर में
1: के आप इज लोके के आदित सोके
2: के तूत बरने के प्रभुत करने
1: के राजन प्रभा है के तरमंग तुझा है
2: के अशोक बरने के सर्व

0: सर्वत्र मानिया के सर्वत्र दानिया
1: सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
0: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसे
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसे
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा
1: के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसे
0: के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधान्य
1: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वम कली में के परमम फहीम
1: के आकला नामे के साहेब कला में
0: के हुस्नल वजू है तमाम रजू है
1: हमेशु सलामे सली खुद मदामे
0: गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते
1: बैंदुल मकाने जमीनुल जमाने
0: गनी जुल दमामे रजू अलिदाने
1: हरी खुदा की में जर्याय के किने
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
1: अजीजु निवाज है गनीमुल खिराज है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विपूत है
1: प्रमुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है
1: समस्त पदार्थ

0: अंग है।
1: मत पाषण तुए प्रसाद मुन मन पर नाम गुण गन मुदा।
0: हर बड़े गांजा हर नर पर पांज
1: गन पर नाम मुन मन सला।
0: हर नर अखंड बर नर

0: पंजन है और गंजन है,
1: रिप्तापन है जब जापन है,
0: अकलंकृत है सर्वाकृत है,
1: कर्ता कर है हर्ता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म,
1: आत्म बस है जस के जस है,
0: अंग पर्यात छंद, नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेज,
1: नमो बिंद्र बिंद्र, नमो बीज बीज,
0: नमो राज संग ताम संग सात रूपे,
1: नमो परम चंतन चंतन स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो सात रूपे,
1: नमो इंद्र इंद्र अनाथ।

0: एक ओंकार सदगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक सुत समूह सिद्धांत के देख फिर कर जोग जति के
1: सुर सुरागन सुद सुदागन सन समूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत कहू न देखियत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपाओं के एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
1: तुरंग कुरंग से कुदर पौन के गौन को जात निवारे
0: बारी पुजान के पूप पली विद्या व शीस न जात बिचारे
1: एते पे तो कहा पे पूप अंत को नंग ही पाए पुदारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल में दंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर ही सती है राज हजारे
0: भूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपा श्री भगवान पजे बिने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दया

0: श्रृंगलिए
1: पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की है प्यासा
0: हमारे
1: तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये
0: काल का त्रास नरिये
1: वो जो सदा हमारे पचास तू जो करियो रक्षा
0: साहिब संसाय प्यारे
1: दीन बांधो चल के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश संता
0: काल पाए शिव जो
1: काल पाए कर भीषण प्रकाश सकल काल का किया तमाचा
0: काल जोगी शिव की हो वेद राज में मौजूद हो
1: जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा
0: काल सब जग बनायो देव देश जायो
1: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: तुसी को मारी सुख बजाज नाम सवारी
1: शिव कण को सब गुण सुख दियो शत्रण को परमो बद कियो
0: अंदर की जाने तुमने ब्र की पीर पहचाने
1: चीकी ते कुचर तूला सब पर कृपा दिस कर भूला
0: दुख पाए की सुख पाए सुरंगे
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
0: जपत कर कर के तारा प्रज तब दे उत्पारा
1: जपा कर कर तो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं।

0: तुम्हारा लखाना जाए पसारा के भी सदा प्रथम संसारा
1: रूप स्वरूप रंग प्योर आपके ऊपर
0: अंडा जेरे से तकीनी उत्पय खान बहुत दिनी
1: परे तिंके दुष्ट कुतुम रे
0: पुरख जान पंख परे तिहारे।

0: ऐसा कम मुले ना कीचे जित अंत पछोताइए।
1: सतगुर का उपदेश सुन तो वे तेरे नाले,
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया,
0: अंतो ना पाया कि ने तेरा अपना आप तू जाने।
1: जी जान सब खेल तेरा क्या को आँख बखाने,
0: आके था वेखे सब तू है जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया,
0: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया मरा गुर की पा किन्नी सच्चा मन वसाया,
0: जी जंत सब तुद उपाय एक वेग परसन आया।

0: लब लोग हंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना
1: कन्यो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना
0: गुरु प्रसादी जिनी आप्त जिया हर वासना समानी
1: कहे नानक चाल भगता जुगो जोग निराली
0: जियो तू चलाए थी चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे
1: जिव तू चलाए थी मैं चले जिन्ना मार्ग पावे
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे
1: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे
0: कहे नानक सच्चे साहिब जियो पावे थी वे चलावे
1: एहो चोहला सब चुहावा सब दो चुहावा सदा चोहला सतगुरु सुनाया
0: एहो तिनके मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया
1: एक फिरे किनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया
0: कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया
1: पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया
0: पवित्र होए गुरमुख जिनी थ्याया
1: पित माता पिता कुटुंब से चुपे संगत सभाया
0: कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर त्याया
0: कर्मी सहज ना उपजे।

0: सहज उपजय इहो सहसा इवजाए
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे झूंबे तालिया
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूरे लागे तिनी जन्म जुए हारिया
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी
0: कूर की सोए पोछे नाही मनसा सट समा

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यंतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के निट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यंतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यंतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यंतर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब।

साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठिया सोही है सबना दा विसाहो सतनाम।

फिर संकट जो न गर्भ न आयो सो कहो तल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत समझी नूर अरसो कुरसो चटी है दुध दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंदे साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहो